अवेलेबल, इच्छा करे सोई, व्हाट एवर यू विल विश यू विल हैव इट बिकॉज यू वर्क्ड, यू मेडिटेटेड, यू डूड गुड कर्मा.

सतगुरु स्वामी माधवानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सब ऋषि मुनि महात्माओं की मात पिता गुरुदेव

ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् जपा कर यही महामंत्र हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सदगुरु स्वामी महाद्वानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति हरि ओम।

0: दीप नारायण भगवान अलकपुरी समादेव देवपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की
0: सत्य सनातन
1: की
0: भारत माता की जय।
2: विश्वगुरु स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस।
1: दोबरी वेचर मोई ड्राही।

ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यदायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।

हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डीजी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासु अकनिष्ठात एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है। क्या ना, जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपने

0: लोग बोलते नहीं है, तो इनके प्रति ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो। यही आज हमें पूज्य स्वामी जो हमें प्रेरणा देते हैं, पूज्य गुरुदेव मादानंद जी महाराज जी कहते थे, सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की, रात भर सेवा की, तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है। मत वो शांति सेवा से मिलती है, तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाये हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ईशा वास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य स्वीदनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कह जाती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Delhi Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Delhi Life Foundation, Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Delhi Life.
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Delhi Life.
1: Yoga in Delhi Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji. DG, Pushpa ji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries,

0: stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of $51,000 to this cause. Thank you.
1: In rupees?
0: Yes.
1: Thank you. Kedonar.
0: Did I say?
1: Among us, there is sitting one Brahmarishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So Brahmarishi ji, aaiye aap, and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lal ji, Brahmarishi, P. Thawla, Nagor.
2: Nagor. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताई है वो मानव तन है। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे, और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे। 84 लाख जोन में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोन है। 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे, बिना सिंह पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट, अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम, ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर। क्या जहां दया है कबीरा, हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता है ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जगरोगे। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में, मेरे को मैं ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है, और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं। क्या तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना, मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि मैं महाराज जी श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में,

मात अरे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहां बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। तू जान बूझे कोई पाप न करे, हो जाए तो पश्चाताप न करे, ये सब लीला उस ईश्वर की तू ध्यान।

ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ओम बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय।

गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलमगुरुमूरति पूजामूलमगुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।

महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।

0: come a little back. Thought of. मेरे पप्पी से आओ यहाँ मेरे पास में, अब दोनों एक साथ साथ रहो बेटा। हमारे मास्क निकाल दो। साइड करो स्लो। थैंक यू।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय।
0: थोड़ा दूर है।
2: हिंदुम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय।
1: श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
2: Without Guru, we cannot know Brahma, Vishnu, Mahesh. Actually, Guru is not only Brahma, Vishnu, Mahesh. Guru is also Par Brahma, Parameshwar. Om.

वन डे माता पार्वती सेड टू शिव जी, यू आर गॉड ऑफ गॉड, बट एवरी टाइम यू आर मेडिटेटिंग, हु इज योर गॉड? शिव जी सेड, माई गॉड इज माई गुरु।

0: पूज्य पाद अनंत शिव भूषित परिभज काचार ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देवपुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय।

0: सतगुरु भगवान की जय हो।
1: बोल दे मैं एक आध बोल दे फिर
2: बताओ थे
0: बोल ले
2: नहीं
0: हाँ ले

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवनपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम

0: Sometimes you stand on the certain spot of the earth, there is a kind of vibration and all negative thoughts come. And sometimes you make such an action, and the whole life you will be sorry for that. So, when you don't know what to do, stay a few steps away. You will see immediately your mind will change. This is Mahasamadhi of Devapuriji's Samadhi Sthal. His physical embodiment, that part of his mortal being or his body, Panch Tattva body, is sitting here. When you touch these stones, you have already touched his body. And the bhakta knows what it means to touch here.
1: To Sajjano, सत्संग करते रहना, महापुरुषों का श्रवण करते रहना, तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो सकता है। ग्रस्त का सन्यासी का कोई कारण नहीं है। साधना करेगा, अमृत पिएगा, वो ही अमर हो जाएगा। उसका नाम अमृत है, अमर होना है, सब पापों से निवृत्त होना है, उस महापुरुषों का नाम ले। गुरु नानक कहते हैं, सतगुरु नाम जहाज चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा से सेवे तो गुरु पार उतरन हार। श्रद्धा करके गुरुदेव की सेवना करे तो गुरुदेव पार उतरे।

घमायुरस्तु, गंधाकृत पुष्प गुरु जी के चरण पादुकों पे चढ़ा देंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवता

0: ये जना पर्युपासते तेषां नित्यां युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यं स्मृते सकल कल्याणं वाचनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं मृत्युं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेश्वारम्भकारे सूत्रेस् त्रिभुवनेश्वराः देवादिशन्तन सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनाः विश्वेशं पादवन्दुण्डिं दण्डपाणिं च वैरवं वन्दे काशीङ्गुहा गङ्गां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारि यद्दुर्वदा सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन् महा गणाधिपतये नमः सर्वोपचारार्थे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अथ संकल्प, हाथ में अक्षत पुष्प कुछ दक्षिणा लेकर के जल लेकर के संकल्प प्रारंभ करेंगे।
1: थैली कहाँ है? थैली ऐसा वाली लो। हाँ करो, संकल्प करो। ओम विष्णु विष्णु विष्णु हेलो
0: जी समझी।
1: हाँ शुरू करिए।
0: ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु हो श्रीमद भगवतो महाप्रदस्य विष्णु रात्ने या प्रवर्तमान श्री ब्रह्मणो निजति प्रार्थे श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस मन्वंतरेष्टा विंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे
1: जम्बूद्वीपे
0: समझी। वो देश कौन
1: सा? चेक रिपब्लिक देश है, स्ट्रिल की ग्राम है।
0: चेक रिपब्लिक देश है, स्ट्रिल की ग्रामस्थ दे समुपार अंतर्गते आश्रम प्रांगणे प्रभवादि षष्ठ संवत्सराणा मध्ये परावरामि संवत्सरे रविदक्षिणायणे महामांगल्य वर्षारितौ महामांगल्ये प्रथमासोत्तमे मासे शुभे आषाढमासे शुभे शुक्लपक्षे अद्य दशम्यान्तौ अद्य वासरावासरस्तु अद्य शुक्रवासरान् भृगुवासरान् वितायां सुम नक्षत्रे अनुराधा नक्षत्रे शुक्ल योगे करकरणे परतः वणिज करणे वृश्चिकस्ते श्रीचंद्रे कर्कस्ते श्रीसूर्ये श्रीदेवराजगुरौ शेषेतुग्रे सुविदायितं राजस्थानानि स्थिते तत्सु एवं ग्रहगुणगण विशेषमिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अच्युतगोत्रोत्पन्नस्य परमभूज्य महामण्डलेश्वर स्वामिवर्यः सर्वेषां संन्यासिगणानां सर्वेषां भक्तजनानाम् अद्य समुपार्श्वे मम आत्मनः श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् आध्यात्मिक उन्नति सिद्ध्यर्थं गुरुकृपा प्रसादेन प्राप्त्यर्थं उत्तरोत्तर गुरुभक्ति सद्विचाराणां प्राप्ति अर्थं श्री सद्गुरुदेव प्रीत्यर्थं अद्य दिने गुरु पूर्णिमा महोत्सवे अंतर्गते पूर्वाह्ने गुरुपूजने तथा च सर्वेषां देवतानां ध्यानम् अहं करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये। ओम।

0: करके गुरु जी के चरणों पे, जो चरणों पादुका है उस पे सीधे राइट हैंड से थोड़ा थोड़ा चढ़ाना है,
1: लेफ्ट हैंड।
0: मैं बोलूं क्या, समझे? रुकूंगा,
1: शुरू करो।
0: हाँ, लेफ्ट हैंड में अक्षत पुष्प लेकर के गुरु जी के चरणों पे चरण पादुका पे चढ़ाना है। ओम ब्रह्मज्ञान प्रथम पुरस्ताद विषीमद सुरचुभे नाभ सबुज्ञा उपमाष्ट सतश्चिवाह ओम अखंडमंडलाकानम व्याप्त येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै

0: गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा ओम भूर्वस्वः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः चरण पादुका पादुकेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि सर्वोपचारार्थे पुष्पम समर्पयामि। चार बार गुरु जी के चरण पादुक के ऊपर जल चढ़ाना है। ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि मुखे याचमनीयं सर्वांगे जल स्नान समर्पयामि। अद्य पंचामृत मिलित पंचामृत स्नान। ओम पंच नदियः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवत्तरित। ओम श्री सद्गुरु चरण कमले भ्यो नमः श्री चरण पादुके भ्यो नमः पंचामृत स्नान समर्पयामि पुनः शुद्धोदक स्नान समर्पयामि। ओम मा आपोष्टामयो भूपस्थान ऊर्जेजदातन महेरणाय तक्षसे जो वह शुभतमो रस तृतीय वाजयते हनः शुद्धोदक स्नान समर्पयामि गंधम समर्पयामि। चरण पादुक के ऊपर चंदन कुमकुम अक्षत लगाना है। ओम मा गंध द्वारा दुरादर्शा मित्य पुष्ट अंग्रेशनेश्वरी दर्भ भूता नाम दामी हो पव्य श्रीय गंध गंधर्वस्तवा विश्वा वसु परिदादात विश्वस्यारिष्टे यजमानस्य परिदीर्घसग्निरडयीडितः। ओम भूर्वस्वः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः गंधोदक स्नानं समर्पयामि गंधोदकं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि मूलि चढ़ाना है। ओम जुवा सुवासः परिवीता गासौ श्रेयान् भवति जायमानः पन्थीरासवनन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। ओम भूर्वस्वः वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्तेन आत्मनीयं जलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। माला है तो पुष्पमाला गुरु जी के चरण पादुका पे चढ़ाना है। ओम ओखदि प्रतिमोदितं भुक्वदि प्रतुपरि स्वाहिव तद्वरि बीन्दा पारिष्णवः पूर्वस्वः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पमालान्तेन नाना परिमल द्रव्याणि गुलाल सिंदूर कुछ भी है इत्र वगैरह तो चरण पादुका के ऊपर छोड़ना है।
1: Just get me one bottle, Sagarpuri. Just give me my bottle, new bottle.
0: मंजरी वो गई है बर्जेति बाहुन जाया है दिम परिबाद माना अस्तकनो विष्मान भुमान भुमा गुजम परिबाद पिष्पा ओम गुरुवत बहा नाना परिमल द्रव्यानि समर्पयामि सुगंधित द्रव्यम इत्र वगैरह कुछ है रूई में लगा करके चरण पादुका के ऊपर चढ़ाना है। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधि मुष्टिवर्धनं मा रूपार्गमिन्द्रान् मृत्युर् मुक्षेमामृतात्। ओम भूर्भुवस्वः सुगंधि द्रव्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। फिर से अपने सभी के हाथ धोना है और जो भोग है नैवेद्य गुरु जी का ध्यान करके नैवेद्य का भोग लगाना है। हरि जी भैया
1: ढक्कन उठा दे नीचे से।
0: स्वामी जी बोलू आगे?
1: बोलो बोलो आप तो बोलते रहो।
0: भोग गुरु जी के जो नैवेद्य है भोग रख करके धूप दिखाना है धूप और दीपक जलाना है। ओम मां धूरति धुर्ब दुर्बंधन धुर्ब दंडोस्मान धुर्ब जिदन धुर्ब जंबयन धुर्ब महा दैवा नाम से पन्नीतामगो सदनीतामं पवरीतामं जिस्तामं देव भूतमं मां धूपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि हस्त प्रक्षालनम हाथ धो करके भगवान के नैवेद्य लगाना है। सद्गुरुदेव भगवान के नैवेद्य का अर्पण करें। ओम नाभ्यासैदन्तरिक्षकं कृष्णो द्यौः समवर्धतापद्यां भूपृदिशः श्रोत्रा तथा लोकावकल्पयन्ता। ओम सत्यन्द्रव्रतेन प्रशयन्त्यामि मृतोपसन्न स्वाहा धैर्मुद्रां प्रतिकृत्य। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पूर्णं ब्रह्मणे नमः नैवेद्यमत्

0: पाणिं समर्पयामि, उत्तरापोषणं समर्पयामि, हस्तमुख प्रक्षालनं समर्पयामि, मुखवासार्थे बीडापूगिवृतामूलं समर्पयामि, स्वर्ण पुष्पार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। जो दक्षिणा लाए हैं स्वामी जी, गुरु जी के चरण पादुका के पास चढ़ा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्धदाग्रे भूर्भुवः जातः पतिर्विकासीत सदाधार विन्द्यामुते मांकस्मै देवाय हविकाव्यदेव। हिरण्यगर्भ गर्भस्थमहेमबीजं विभावतो अनंत पुण्यवदशान्ति प्रयच्छ मे। ओम पूर्वस्मः द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि, ऋतुफलं समर्पयामि। जो फल फ्रूट कुछ है तो फ्रूट भगवान सद्गुरु देव के ध्यान करके वहां चढ़ा देंगे। ऋतुफलं समर्पयामि, सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि, प्रार्थना प्रणमस्कारा समर्पयामि। आरती उत्तम जी कर्पूर आरती करेंगे या?
1: हाँ गुरु आरती,
0: पूरी बड़ी वाली
1: गुरु आरती। गुरु आरती ओम शल।

सर्वासी ओम शलाकुर्जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदेव नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरी जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडल।

0: ॐ
1: राजाधिराजाय
0: राजाधिराजाय
1: दशाहिने
0: दशाहिने
1: नमो
0: नमो
1: वयं
0: वै
1: वै श्रवणाय
0: श्रवणाय
1: कुर्महे
0: कुर्महे
1: समे
0: समे
1: गामान
0: गामान
1: गाम
0: गाम
1: गामाय
0: गामाय
1: मह्यं
0: मह्यं
1: कामेश्वरो
0: कामेश्वरो
1: वै
0: वै
1: श्रवणो
0: श्रवणो
1: ददातु
0: ददातु
1: कुबेराय
0: कुबेराय
1: वै
0: वै
1: श्रवणाय
0: श्रवणाय
1: महाराजाय
0: महाराजाय
1: नमः।
0: नमः।
1: ॐ स्वस्ति
0: स्वस्ति
1: साम्राज्यं
0: साम्राज्यं
1: भोज्यं
0: भोज्यं
1: सुराज्यं
0: सुराज्यं
1: वैराज्यं
0: वैराज्यं
1: पारमेष्ट्यं
0: पारमेष्ट्यं
1: राज्यं
0: राज्यं
1: महाराजमा
0: महाराजमाधिपत्यम
1: त्रिपत्यमयं समुद्रप्रिया ईशा सार्वभौमः सार्वशान्तात् परार्धात्।

0: हिंदू धर्म सम्राट स्वामी श्री माधवानंदपुर जी महाराज की जय।
1: जय हो
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
1: जय हो
0: अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवतार गुरु जी महाराज की जय। सत्य सनातन।

0: महाराज
1: नमा
0: की जय।
1: दायो। स्वामी जी, सभी लोग फिर से हाथ में जल लेंगे।
0: हाँ जी,
1: भैया बोलो आगे। विक्रम भैया, देवं ग्रह गुण गण विशेष निष्ठायाम शुभ पुण्य तिथौ अच्युत गोत्र उत्पन्नस्य परम पूज्य महामंडले महामंडलेश्वर स्वामी वर्यः सर्वेषां सन्यासी गणानां भक्त जनानां अद्य अभी वहां पर टाइम टाइम
0: हुआ 8:13
1: अद्य प्रदोष वेलायां सायंकाल रात्रि काल वेलायां अद्य दिने यथाशक्ति षोडशोपचार गुरु चरणारविंदयोः गुरु चरण पादुकेभ्यो नमः पूजनाख्यन सर्वेषां भक्तजनानां अहं प्रीयतां नमः तत्सत् साम्बशिवार्पणमस्तु। विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। ओम शक्राय नमः। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। स्वामी जी चरणों में दंडवत प्रणाम।
0: हरिओम हरिओम ब्रह्मणे नमः। So when you all come for pranam, you touch the flowers, don't offer it, you all touch it, and then we will put all the flowers together on top, so then it's touched by all of you, the flowers, okay? The flowers are here. Namo Narayan. Namo Narayan, Namo Narayan.
2: Pardon. Až budete přicházet k oltáři, tak se všichni dotkněte těch květin, co tam jsou položené. Nedotýkejte se přímo těch střevíců, ale dotkněte se květin. Neberte ty květiny a až všichni dokončíme tu řadu, tak my ty květiny položíme na střevíce. A tím vlastně ten pozdrav bude vykonán od nás všech.
0: Oh, okay, nothing. Found it. Nothing. Found it, found it. I couldn't find this, I found it. It's okay.
3: नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसाहिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तुते वासुनाद्वासुदेवस्य वासुतं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुराज्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। All of you sit down. Where's yours? Huh? Do we have for everyone? Do we have shawls for all the sannyasis?
4: Yes, we have.
3: No. Hariyom Sasinandro Vidashvaha Sasina Pugha Vishvedaha Sasina Starksho Varishtanemihi Sasino Brihaspatir Dadatu Prakadashva Marutha Prashnimatara Shvam Java No Vidatehu Jagmayagni Jivva Manava Sura Chakso Vishve No Deva Avasagaman Niha Badram Karne Bhishanaya Madeva Badram Pashema Kshavirajatraha स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्नोभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदौ अग्निदेवा जत्रान् शक्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरकतायुर्गन्तोः अदितिर्दोरतिर्नन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्र विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजनामदितिर्जातमदितिर्जनित्वं माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौखदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शांतिर्भवतु सर्वार्ष्ट शांतिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वारे हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः।
0: Kuladevatabhyo namaha, Sthanadevatabhyo namaha, Gramadevatabhyo namaha, Ishtadevatabhyo namaha, Shri Gurubhya Charnakamlebhyo namaha, Harihi Om.
2: Sridev Namagvan Ki Jai. Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Dhyana Mulam Guru Murati, Puja Mulam Guru Padam, Mantra Mulam Guru Vakyam, Om Guru Kripa. Om Deep Jyoti Parabrahma, Deepam Sarve Mohanam, Deepanam Sujate Sarvam Sandhya, Deepam Sarva Satya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Raki Jai.
4: Sridip Narayan Bhagavan Ki Jai.

श्रीदीपनरे भगवान की श्रीदेवपुरी स महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंदजी भगवान की विश्वगुरु महामंडलेश्वर परहंस स्वामी महेश्वरानंदजी गुरुदेव की महामंडलेश्वर श्री स्वामी तरपुरी जी महाराज की महामंडलेश्वर स्वामी विवेकपुरी जी महाराज की जय हो।

श्रीदीप नारायण भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। शंकर भोलेनाथ की जय।

भगवान की जय। देवापुरीशा महादेवा की जय। स्वामी मधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु जी महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। अवतारपुरी जी महाराज की जय।

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय, श्री सत गुरुदेव की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव, माधवानंद जी भगवान, सत्य सनातन धर्म, मात पिता गुरुदेव की, ओम शांति शांति शांति।

0: भगवान की जय, श्री देवेश्वर महादेव
1: की जय,
0: स्वामी मानवानंद जी भगवान
1: की जय,
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।

दीप ज्योति पर ब्रह्म दीपम सर्वे मोहनम दीपनम सजते सर्वम संध्या दीपम सर्व सत्यम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकम् नित्यम् विमलचलम् सर्वदिशाक्षिभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम्